पट्टी खोल महिवाल ने पट दसे पट पट्टे सन अख ना जाए पट्टी पिट पिट के होई बेहोश सोनी बन्ने कौन ते कौन बनाए पट्टी आई होश ते हो हैरान बोली कैंडी कौन गया पढ़ाए पट्टी पट होने ने चीर ले पट अपने इसे ले के सोनी भी जा।

जदों चमकौर दी गड़ी छड़ के आए रात दे हनेरे विच तुरदे तुरदे पातशाह माछीवाड़े दे जंगल विच पहुंचे। जामा लीरो लीर है पैरां विच जोड़ा नहीं वो भी किधरे निकल गया छाले पए हुए ने। सारा दिन मैदाने जंग विच युद्ध करने वास्ते सिंघां नूं तैयार कर करके भेज दे रहे। इस तो पहली रात वो भी घमासान युद्ध दे विच ही बतीत हुई। आनंदपुर दे विच भी साहिब जी नूं कोई किसी प्रकार का आराम नहीं मिलिया। किन्ने ही दिन तो बेआरामी और उनिंद्री की अवस्था माछीवाड़े की जंगल विच पहुंचे ने। आराम करन दे वास्ते आप टीम दा सराहना लेके पुंजे ही लेट गए ने। मखमला ते सौन वाला अज धरती दा विछाउणा करके टीम दा सराहना लिया होया है। विश्राम अवस्था विच लेटे होए ने गुरु कलगीधर पातशाह। राही एक तुरिया आउंदा वेखिया दूरों इसने नजर भर के कौन है इस बयाबान जंगल दे विच टीम दा सराहना लिया होया बेपरवाही दी नींदर सुत्ता होया कौन है। नाल ही अंतर ख्याल उत्पन्न होया इस तरह जापदा है कोई नूरानी जोत इस जंगल दे विच आके विराजमान हुई है। इंज जापदा है कोई बेपरवाह कोई बादशाह दा बादशाह इस जंगल दे विच भाग लाने वास्ते आया है। इन्हां चंद लाइनां दे विच कवि ने अपने ख्यालातां दा प्रगटावा

उस मंद मंद चलती हुई पवन नू हवा नू संबोधन करके कहता है, ऐ माछीवाड़े दी हवाए अज तेरे भाग जाग पए ने, ऐ माछीवाड़े दी धरती तेरी किस्मत जाग पई है, दो जहान दा वाली तेरी गोद दे विच विश्राम करन वास्ते कुछ चिर लई लेते हैं, सेवा कर ले रज रज के सेवा कर ले, आहिस्ता आहिस्ता चल मतां पत्तियां दे खड़ाक नाल किधरे इसकी अख ना खुल जाए, पता नहीं किन्ने चिर दा उनिंदरा है, याद रख तू सेवा पई कर दी है इसकी, दुनिया तेरे इस पवित्र स्थान ते आके मत्थे झुकाया करेगी नमस्कार करेगी, क्योंकि इस धरती नू अज मेरे गुरुदेव कलगीधर पातशाह जी ने अपनी चरण छो बख्शिश करके इस दे भाग जगा दिते हैं, सेवा दा अवसर मिलिया है, कर ले सेवा। अखीरलियां पंक्तियां विच हवा नू संबोधन करके कहिंदा कवि

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

उम्मते और भी हैं, उनमें गुनाहगार भी हैं, इज्वाले भी हैं, मस्तमय पिंदार भी हैं, इनमें काहिल भी हैं, गाफिल भी हैं, होशियार भी हैं, सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी हैं, रहमतें हैं तेरी।

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London, with even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.

0: ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरे पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: समथिंग न्यू इज कुकिंग एट जिना रेस्टोरेंट। कम एंड डिस्कवर our exciting new menu packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste and something new.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: फ्री कोर्सेज एट शिपली कॉलेज, free teaching assistant courses, free health and social care courses, free childcare courses, free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.
3: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

0: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
2: Official Media Partner, Sunrise Radio.
3: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
4: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
3: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
4: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
3: बुकिंग और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

0: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. A Sunrise Radio hit of the hour.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज। चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
3: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.

दुनिया के नक्शे पर न जाने कितने मुल्क उभरे और वक्त की रेत में दबकर पना हो गए, मगर मैं आज भी जिंदा हूं।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाया रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 01274735043 पर कॉल करें।
3: Experience something truly spectacular as the internationally renowned Flower Carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.

दुआओं के फूल आपके नाम करते हैं, आपकी चाहतों को, आपकी मोहब्बतों को सलाम करते हैं। बन जाए आपकी ज़िंदगी खुदा की नेमतों और बरकतों से जन्नत, यही दुआ हम सुबह दोपहर और शाम करते हैं। 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे, ये आपका अपना सनराइज़ रेडियो है। शहनाज मंसूर आपकी खिदमत में हाजिर है। कबूल कीजिए मेरा मोहब्बत भरा चाहतों भरा खलूस भरा अता की अता गहराइयों से। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और जुमा की बहुत बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज़ ने आप तमाम को खैरियत से पाया होगा। आपका पिछला हफ्ता और आपका आज का दिन अभी तक खैरियत से गुजर रहा होगा। आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और आप लोगों के साथ ज़िंदगी के हर लम्हे को इंजॉय कर रहे होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें और अपनों के साथ साथ रहें। अल्लाह पाक आपको और आपके साथ जुड़े तमाम खूबसूरत रिश्तों को उन तमाम नेमतों से नवाजे जिसने आप सबके लिए, आपके हमसायों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बुज़ुर्गों के लिए और आपके चहेतों के लिए, आपके दोस्तों अहबाब के लिए खैर बरकत हो, सुकून हो, अमन हो, राहत हो, सेहत व तंदुरुस्ती हो, खुशहाली हो, मोहब्बत हो और ज़िंदगी और आखरत की, दुनिया और आखरत की भलाई हो। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे को खैर आफियत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल आसान फरमाए, आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता करे, आपके रिस्क, आपके जान व माल और आपकी औलाद में बरकत अता फरमाए और आपकी ज़िंदगी के दामन को खुशियों से माला माल कर दे। अल्लाह पाक आपको हर किस्म के हासिदों से, बुरी नज़र से और दुश्मनों से हमेशा हमेशा महफूज रखे। अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता आज आप में से कोई बीमार है, परेशान है, किसी मुश्किल में है, तो हम दुआ करते हैं, हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको सेहत कामला और आजल अता फरमाए, आपकी मुश्किलात को आसानियों में बदल दे और आपको दिली, ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी सुकून अता फरमाए। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात को आसानियों में बदल दे। आमीन सुमा आमीन।

0: हमारी और आपकी मुलाकात होती है हर फ्राइडे को 11 और 2 के दौरान। आज भी आपकी दुआएं एक बार फिर हमें यहां पर लेकर आई हैं और हमें आपसे मिल बैठने का मौका मिला है। आपसे मुलाकातें भी होंगी, आपसे बातें भी होंगी, आपके डेडिकेशंस भी होंगी और आपके पैगामात भी होंगे। हमेशा की तरह यादों का सफ़र है और इस सफ़र में आप हमेशा हमारे हम सफ़र रहे हैं। आज भी इसी उम्मीद और यकीन के साथ आए हैं कि आपका साथ मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा, आपकी दुआएं पाएंगे और आपके साथ साथ साथ ये 3 घंटे बिताएंगे। जी हाँ जी, ये खूबसूरत सफ़र होने वाला है आपके संग संग। आपके आने से हमारे इस यादों के सफ़र को 4 चांद लग जाते हैं और ये सफ़र हमेशा की तरह आज भी हम इसे खूबसूरत बनाएंगे आपके साथ साथ। डेडिकेशंस के लिए और अगर आप हमारे गीतों के साथ अपने नाम को या किसी के नाम को भी जोड़ना चाहें तो आप आ सकते हैं। स्टूडियो की लाइनें खुली हैं आपके लिए 01274306666। यादों का सफ़र हम हिट ऑफ द आवर के बाद शुरू करेंगे। कमर्शियल हो, हिट ऑफ द आवर होगा, कमर्शियल होगी और फिर आपसे मिलेंगे हम इसी मकाम पे। जाना नहीं, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6, and even 8-bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio, hit of the hour.

0: सामने
1: टूट गई टूट के मैच्योर हो गई तेरी जिद से मजबूर हो गई। बहुत ही खूबसूरत हिट ऑफ द आवर आप सुन रहे थे 103.2 एफएम पे। टाइम बताते हैं आपको
2: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
1: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का जो टाइम है वो है 11:17। लेनी है हमें ब्रेक और आते हैं ब्रेक के बाद।
3: 24 मौत
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230300 दास ब्रेडफोर्ड 7230300।

is Halifax, Manchester, East Lancashire. Blackburn, Burnley, Darwin, Nelson, Accrington, Milton Keynes or West London maybe. इसके अलावा 100.6 FM पे आप सुन रहे हैं हमें across West Yorkshire और कालडेडेल के इर्द गिर्द के इलाकों में. आप के जरिए भी आप जो एप्पल गूगल ऐप और एप्पल ऐप के जरिए भी आप जिसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, तो उसके जरिए भी आप 24 घंटे हमें सुन सकते हैं. और हमारी सनराइज ऐप के जरिए भी आप जहां चाहें जब चाहें सनराइज की नशरियात को 24 घंटे सुन पाते हैं. मैं हूं शहनाज मंसूर और आपके साथ साथ रहूँगी दोपहर 2 बजे तक. पुराने सदाबहार गीत होंगे, आपकी फरमाइशें होंगी, जी नहीं आपकी डेडिकेशंस होंगी, आपके पैगामात होंगे जो कि हम हवा के दोष पर आपके चहेतों तक, आपके अपनों तक हम पहुंचाएंगे. और आपके पैगामात और आपके गीत, आपकी मनपसंद आवाज़ें आपके गोशे गुजार करेंगे. सुनते रहिएगा, साथ साथ रहिएगा और सफ़र में हमारा साथ ज़रूर निभाइएगा. आपका होना बहुत ज़रूरी है इस सफ़र के लिए. माज़रत चाहूँगी हाजरा जी, आपकी कॉल मिस हो गई. हीरा खान जी, आपकी कॉल भी मिस होगी. मैं जानती हूँ कि जो गीत हमने लगाया था आज अरे परदेसी, हमारी बहना हाजरा जी आपका मनपसंद गीत है, आपको अच्छा लगा, अच्छी बात है, आप ही के लिए था. यादाबरी का बेहद शुक्रिया. अभी अभी तो हम आए हैं, अभी बहुत वक्त है. अगर आपके पास वक्त है और आप दोबारा से फ़ोन करना चाहें तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर बात होगी. हीरा खान जी, आपसे भी माजरत है, आपकी कॉल भी मिस होगी. आप भी फिर से कॉल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके पैगामात हम आपके दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँगे. यादाबरी का बहुत बहुत शुक्रिया और इस बात का एहसास दिलाने का कि आप हमारे साथ साथ हैं, आप हमारे हम सफ़र हैं हमेशा की तरह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. स्मिना जी, आपका मैसेज मिला. हाजरा मिस्टर मिसेस हुसैन, आपके मैसेज भी मिले और इसके अलावा हिना शौकत, आपके मैसेज भी मिले. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानिब से तमाम सामेन को, सनराइज़ की टीम को. अस्सलाम वालेकुम और जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद. अब तो हमारी मुश्किल भी आसान हो गई है क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आपका साथ है, आपका प्यार है और आपकी दुआएं हैं.

ला हासिल ही सही वो मोहब्बत तो है, ला हासिल ही सही वो मोहब्बत तो है, उसे एहसास हो ना हो मोहब्बत तो है, वो मेरा नहीं ये हकीकत सही, वो मेरा नहीं ये हकीकत सही, मगर दिल में अब भी उसकी चाहत तो है, ना मिलने का गम है ना खोने का डर, उसे याद करने की आदत तो है, हमें उसने ठुकराया कोई बात नहीं, हमें उसने ठुकराया कोई बात नहीं, मगर दिल में उसकी हसरत तो है। अलबेला रे दिल तोड़ के न जा, लता जी की आवाज में ये शोक सा गीत था जिसे आपने सुना 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप सुन रहे हैं हमें पूरी दुनिया में। डीएबी के जरिए सुनते हैं ब्रैडफोर्ड, कीथली, इल्कली, स्किप्टन, लीज, हालिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नी, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन, मिल्टन कीन्स और वेस्ट लंदन में भी। इसके अलावा 100.6 FM पे आप सुनते हैं क्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर और कालडरडेल के इर्द गिर्द के इलाकों में। मैं हूं शहनाज मंसूर, आपके साथ साथ हूं दोपहर 2 बजे तक पुराने सदाबहार गीतों के साथ, पुरानी यादों के साथ, पुरानी आवाज़ों के साथ, हमेशा की तरह आपकी यादों को याद करने आए हैं, मिलजुल कर उजागर करने आए हैं वो लम्हे जिन्हें आप भूल चुके थे और वो यादें जिन्हें आप अपने दिल के कमरों में बंद कर चुके थे। आज उन्हीं की चाबी लेकर आए हैं और ये चाबी है हमारे गीत, जो कि आपके दिल के उन दरवाज़ों को खोलेंगे और आपकी यादों को बाहर निकालेंगे। हमेशा की तरह आपको अच्छा लगता है हमें आपकी यादों को कुरेदना और हमें भी आपकी यादें याद करना, आपको याद करवाना अच्छा लगता है। आपके साथ बातें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, आपके मैसेज मिल रहे हैं, आपका बेहद शुक्रिया जो भी हमारा साथ निभा रहे हैं, आपको खुश आमदीद, वेलकम, जी आया नू, शुक्रिया अदा करती हूँ आपने अपने अजीज़ भाई, जी हाँ जी नदीम मंसूर भाई का आपसे बात हुई, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा, काम पे बिजी हैं लेकिन उसके बावजूद आपने अपनी बहन को याद किया, दुआओं से नवाजा, आपने तमाम सामीन को, सनराइज़ की तमाम टीम को और अपनी तमाम फैमिली को जो भी सुन रहे हैं अस्सलाम वालेकुम कहा है और जुमा की बहुत बहुत बहुत मुबारकबाद दी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समीना जी आपने कहा है कि मेरी टीम को भी मेरी जानिब से और सनराइज़ की टीम को और तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम कह दीजिएगा और जुमा की बहुत बहुत दुआएं और मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप साथियों का, भाइयों का, बहनों का जो कि हमारे साथ हैं और गीतों को एंजॉय कर रहे हैं, यादों को ताज़ा कर रहे हैं। हम सब मिलजुल कर यादों का सफ़र है और आपका हमारा हम सफ़र बनना हमें अच्छा लगता है। आपके साथ साथ ये सफ़र बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है। जल्दी से एक और खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इस गीत को आगे बढ़ाएंगे, इस गीत को, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ आपके पैगामात भी हम जो है एयर पर हवा के दोष पर अपने सुनने वालों को सुनवाते जाएंगे। तो बढ़ते हैं, देखते हैं कि गीत तो दो है मेरे सामने, अल्लाह ये अदा कैसी या आंचल में सजा लेना खुशियाँ, थोड़ा उदास है, चलिए सुन लेते हैं, बहुत दिन हुए नहीं सुना ये गीत, आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में ये गीत।

0: आंचल में सजा लेना कलियां, जुल्फों में सितारे भर लेना। मोहम्मद रफी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे 103.2 FM पे। तो अब एक अनाउंसमेंट है कि सनराइज लिसनर्स के लिए कि सनराइज रेडियो लिसनर्स चॉइस अवार्ड जो है अवार्ड्स जो है वो 2026 बहुत जल्द सनराइज रेडियो पर आ रहे हैं, जिस पे आप सेलिब्रेट करेंगे बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस वेन्यूज और अपने जो आर्टिस्ट जो आपको बहुत पसंद है उनके लिए आप वोटिंग कर सकते हैं। और वोटिंग जो है एक्सक्लूसिव जो क्लब मेंबर्स होंगे उनके लिए होगी। आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में सनराइज रेडियो और सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो को। सब डिटेल्स आपको हम बताई जाती हैं गाहे बगाहे सनराइज रेडियो पे। तो आप कैसे मेंबर क्लब मेंबर्स बन सकते हैं और फ्री में बहुत सा जो है फन होने वाला है, हंसी मजाक होने वाला है सनराइज रेडियो पे। गेम्स भी होंगी जो कि राज के साथ आप प्ले कर सकते हैं सनराइज रेडियो पे। बॉलीवुड के नॉलेज के मुताबिक कि आपको बॉलीवुड के नॉलेज का कितना नॉलेज है, आप कितनी फिल्में देखते हैं और या किन किन एक्ट्रेस के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उनकी ज़िंदगी के बारे में या उनके करियर के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं। इस किस्म के जो क्विज जो होंगे वो होंगे सनराइज रेडियो पर राज के साथ। उसके लिए आपको जो है वो फ्री में ज्वाइन करना होगा सनराइज रेडियो को, रेडियो का जो क्लब है। जी हाँ, मेंबर्स क्लब, ये एक्सक्लूसिव जो मेंबर्स होंगे उनके लिए होगा ये फन और गेम्स। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और ये जो फन हो रहा है बहुत कुछ हो रहा है सनराइज रेडियो पर, बस सुनते रहिएगा और सनराइज के साथ जुड़े रहिएगा 24 घंटे। आपके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ आ रहा है सनराइज रेडियो पर। सनराइज रेडियो जो है वो बहुत ही ऊंचाइयों पर जा रहा है, बहुत दूर तक, दुनिया के हर कोने तक पहुंच चुका है आपकी मदद से। और यकीनन आप इंजॉय करेंगे ये गेम्स भी जो कि आ रहे हैं, फन एंड गेम, और जो होगा ये क्विज वगैरह राज के साथ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो बढ़ते हैं, ब्रेक का टाइम हो चुका है। उससे पहले आपको टाइम बताते हैं कि क्या टाइम है।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ियों में यूके का जो टाइम है वो है 11:45 और हमें लेनी है छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद आते हैं आपके पास।
2: सनराइज रेडियो, सनराइज।
3: Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.
4: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से, आमीन। आप सबको अल्लाह महफूज रखे हर बला से। बहुत ही खूबसूरत गीत मोहम्मद रफ़ी की, बहुत ही खूबसूरत सदाबहार आवाज़, हम सब की मनपसंद आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे। और हमारी बात हुई हमारे छोटे भाई, बहुत ही छोटे भाई वाजिद भाई से, हमेशा की तरह बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ आए और सभी को ढेरों दुआएं देकर गए हैं। बहुत अच्छा लगता है वाजिद, आप जब भी आते हैं और सभी को बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ याद करते हैं और सभी को दुआएं भी देते हैं, और आपकी ये रिक्वेस्ट भी होती है कि हम आपके लिए दुआ करें, वो तो हमेशा कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम हमेशा आपको दुआएं देते हैं और हमारे सामीन भी हमेशा आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम कहा है, जुमा की मुबारकबाद पेश की है और आपने गीत भी सुनना चाहा था। इंशाल्लाह अगले घंटे में आपकी डेडिकेशंस भी होंगे, आपके दोस्तों के नाम भी होंगे और आपके पैगाम भी हम आपके दोस्तों तक पहुँचाएँगे। बहुत बहुत शुक्रिया यादावरी का, आप बहुत अच्छे हैं। आप जो है दूसरों की जो तारीफ़ करता है, जो दूसरों को इज्जत देता है, वो खुद जो है वो इसका इज़्ज़त के काबिल होता है। खुद इज़्ज़त के जो काबिल होते हैं वही दूसरों को इज़्ज़त देते हैं, और हमारे दिल में भी आपके लिए बहुत इज़्ज़त है। आप हमेशा याद दिलाते हैं कि आप कितना अरसा से मुझे जानते हैं। जी हाँ जी, अपनी बाजी को आप कहते हैं बाजी, बहुत अरसा हो गया आपको सुनते हुए और आपके साथ साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। ये तो सच है, बहुत सच है, जबकि बहुत अरसा हो गया, तकरीबन 25 साल हो गए जब मैंने पहले रेडियो पे काम किया था, आप तब से हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं और हमेशा हमेशा आपने सनराइज़ को सराहा है, सनराइज़ के प्रेजेंटर्स को दुआएं दी हैं, उनका साथ निभाया है। आप जैसे साथी और मुखलिस दोस्त हैं जिनकी दुआओं के साथ सनराइज़ परवास कर रहा है, बहुत ऊंची ऊंची परवास पे पहुंच चुका है, और बस आपका साथ चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए, तो फिर देखते जाइए कि अब क्या कुछ हो रहा है सनराइज़ रेडियो पर, वेरी इंटरेस्टिंग हो रहा है, सुनते रहिएगा। और आपके साथ का और दुआओं का बेहद शुक्रिया। सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, आप तमाम के लिए है

तेरे अलावा था ही क्या मेरे पास, तेरे अलावा था ही क्या मेरे पास कि तूने भी मुझसे खुद को छीन लिया। अजीब सान्या था, कुछ भी टूट कर ना गिरा। अजीब सान्या था, कुछ भी टूट कर ना गिरा, मगर बिखरने ने मेरा सरापाई चैन छीन लिया। वो एक शख्स जो मेरी तमाम दुनिया था, वो एक शख्स जो मेरी तमाम दुनिया था, उसी ने मुझसे मेरा रास्ता छीन लिया। अब आईने से भी नजरें नहीं मिला पाता, अब आईने से भी नजरें नहीं मिला पाता, किसी की याद ने मुझसे मेरा चेहरा छीन लिया।

0: तेरे बिन दिल नहीं लगता। लहजा लहजा बहुत ही खूबसूरत सा गीत था जिसे आप सुन रहे थे हिट ऑफ द आवर में, आपने सुना 103.2 FM पे। मैं हूं शहनाज मंसूर और आपके साथ साथ रहूंगी दोपहर 2 बजे तक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आन पहुंचे हैं। आप सभी का खैर मकदम है, जी आयन खुश आमदीद, गुड आफ्टरनून और जुमा की बहुत बहुत मुबारक। पहले घंटे में आपने बहुत ही खूबसूरत से और प्यार और मोहब्बत के साथ हमारा साथ निभाया और आपके साथ साथ हम दूसरे घंटे में पहुंच आए हैं। आपको वेलकम करते हैं एक बार फिर से, आप तमाम साथियों का, भाइयों का, बहनों का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे साथ साथ हैं, हमारे हम सफ़र हैं और हमारे सफ़र को खूबसूरत बना रहे हैं अपने नामों के साथ, आपके पैगामात के साथ और आपकी खूबसूरत दुआओं के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और जो आ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिनकी कॉल्स मिस हो गई है उनसे माजरत, और अगर आप दोबारा फ़ोन करें तो आपसे ज़रूर बात होगी इंशाल्लाह। आप सभी का यादआवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आन पहुंचे हैं। आपने हिट ऑफ द आवर सुना जिसे आपको आपने बहुत पसंद किया है ना जी, आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए था। और इस घंटे में भी आपके पैगामात भी होंगे और आपके डेडिकेशंस भी होंगे और खूबसूरत गीतों को हम जोड़ेंगे आपके नामों के साथ और आपके दोस्तों अहबाब के नामों के साथ। फिलहाल ये प्यारा सा गीत है जिसे आपके गोशे गुजार करें जी नहीं, उससे पहले आपको टाइम बता देते हैं और फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का जो टाइम है वो है 9 मिनट्स पास 12। जी हाँ जी, 9 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट होने वाले हैं, चंद ही सेकंड्स बाकी हैं। 12 बजकर आफ्टरनून हो चुका है, मॉर्निंग को हम आए थे। घंटा जो आपके साथ बिताया बहुत ही खूबसूरत था, आपकी खूबसूरत बातें बहुत अच्छी लगी। आपसे बातें करना, आपसे मुलाकातें करना हमेशा की तरह हमें बहुत अच्छा लगता है। आपसे मिलना, आपके साथ मिलजुल कर बैठना अच्छा लगता है। तो ये प्यारा सा गीत आप तमाम के नाम जो कि इस वक्त हमारे साथ है। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें।

0: कफन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉन्गलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30, दस ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
0: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

हालात की उलझन सुलझाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरी आंख के आंसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ। तलत महमूद की आवाज़ में अनमोल की था जिसे आपने सुना और आपको अच्छा लगा, आप ही के लिए था। आने वाले गीत भी आप ही के लिए होंगे। आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो को 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में। इसके अलावा डीएबी के जरिए आप सुन रहे हैं हमें कीथली, इल्कली, ब्रैडफोर्ड, स्किप्टन, लीड्स, हालिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन, मिल्टन कीन्स, वेस्ट लंदन में। और इसके अलावा 100.6 एफएम पे आप सुनते हैं काल्डरडेल और वेस्ट यॉर्कशायर के इलाकों में आप सुन रहे हैं हमें। मैं हूं शहनाज़ मंसूर, आपके साथ साथ हूं दोपहर दो बजे तक पुराने सदाबहार गीतों के साथ, आपकी डेडिकेशंस के साथ, आपके पैगाम के साथ और आपकी यादों के साथ। तो बढ़ते हैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, आपकी डेडिकेशंस का सिलसिला शुरू करते हैं। तो खूबसूरत सा गीत, आने वाला गीत लता जी की आवाज़ में है। इस गीत को मैं नाम करना चाहूँगी मिस्टर मिसेस हुसैन, आपके नाम करना चाहूँगी और आपके साथ साथ यही गीत मैं नाम करना चाहूँगी इन शौकत आपके, एजाज़ भाई के नाम, उस्मान भाई के नाम और आपकी जानिब से तमाम सामीन के नाम भी बहुत बहुत शुक्रिया सभी को दुआएँ भेजने का और सभी के जुमा की मुबारक की दुआएं देने का भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये गीत आप सब के लिए है और हमारे तमाम सामीन के लिए है जो भी इस वक्त हमारी सनराइज़ की नशरियात को सुन रहे हैं।

0: चलो तुझे संग लेके, सपनों के रंग लेके। जी हाँ जी, जब कोई दिल में भा जाता है तो इंसान सपने ही देखता है। अल्लाह करे आपके सपने सच हो जाएं। बहुत ही खूबसूरत दो गाना था, आप सुन रहे थे 103.2 FM पे। और अब ऐसा है कि ब्रेक आन पहुंची है, लेते हैं छोटी सी नन्नी सी ब्रेक और फिर आते हैं आपके पास ब्रेक के बाद।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London, with even more areas coming soon. Call 01274 735043 or

जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, मोहम्मद रफी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत आपके गोशे गुजार किया 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप सुनते हैं पूरी दुनिया में। शहनाज मंसूर आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपकी हम सफ़र, यादों के सफ़र प्रोग्राम में आपके साथ साथ और आप हमारे साथ साथ। आपका साथ बहुत प्यारा है, आपके साथ साथ ये सफ़र बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हाजरा जी, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। हमेशा की तरह आप हंसती मुस्कुराती आती हैं और बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ सभी को दुआएं देकर जाती हैं। जुमा की मुबारकबाद भी दी आपने, आप बहुत ही खुश, हमेशा हमेशा खुश रहती हैं और दूसरों को भी खुश कर देती हैं अपनी प्यारे प्यारी आवाज़ के साथ, प्यारी प्यारी बातों के साथ। और आपका आना हमें हमेशा बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, हॉलीडेज़ की तैयारी में हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको खैरियत से और लेकर जाए अपने बच्चों के पास और खैरियत से आपको वापस ले कर आए। अभी चंद हफ्ते बाकी हैं मैं जानती हूँ, लेकिन तैयारी तो करनी है ना। हम औरतों के लिए तैयारी जो है वो जितनी भी जल्दी शुरू करें वो कम होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया यादावरी का, दुआओं का, प्यार का और हमारा साथ दिखाने का, हमारी हौसला अफजाई करने का। हमेशा अच्छा लगता है जब आप आती हैं तो आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। आपके लिए भी गीत ज़रूर लगाएंगे, मैं जानती हूँ किस किस्म के गीत आपको पसंद हैं, ढूंढते हैं और फिर एक और गीत आपके लिए ज़रूर लगाएंगे। फिलहाल ये प्यारा सा गीत पंजाबी का गीत है, ये मैं सुनवाना चाहूँगी हमारे भाई वाजिद भाई आपको और आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों को। अस्सलाम वालेकुम, जुमा की बहुत बहुत मुबारक। और आपके दोस्तों में शामिल हैं महबूब इलाही हैं और चौधरी मुजफ्फर हैं, अब्दुल कयूम फ्राइजिंग हॉल में हैं, अयूब चौहान हैं, जावेद मीर भाई हैं, आसिफ रियासत हैं और इसके अलावा चौधरी फरियाद भाई हैं पाकिस्तान में, सफ़ीउल्लाह भाई हैं, शकील भाई बरले में हैं, नवीद राना हैं और उसके अलावा तारिक भट्ट हैं, कियानी मुदस्सर हैं, परवेज़ ख़ान और आमिर शहजाद। इन सब के लिए आपने गीत सुनना चाहा और इनको दुआएं भेजी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यही गीत मैं नाम करना चाहूँगी, जी हाँ जी, मिस्टर मिसेस हुसैन आपके नाम भी करना चाहूँगी। आशी जी आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, आपके लिए भी गीत ज़रूर आएगा और मुझे उम्मीद और यकीन है कि सामीन आपको भी ये गीत अच्छा लगेगा। दिला ठहर जा यार दा नजारा लैण दे, कोई जांदी वारी सजना नू गल कहण दे। मिसिस कौर आपके लिए भी।

सानू रज के तू सजना दे कोल बैन दे दिला ठहर जा यार दा नजारा लैन दे। मुनीर हुसैन की प्यारी सी आवाज में ये प्यारा सा गीत भूला बिसरा गीत और मेरा मनपसंद गीत जिसे आपने सुना 103.2 FM पे। पढ़ते हैं एक और खूबसूरत से गीत की जानिब। लता जी की आवाज़ में है, मुझे उम्मीद और यकीन है कि सुमेना जी ये गीत आपको अच्छा लगेगा। ये गीत आपके नाम करते हैं, आपकी जानिब से नौरीन के नाम करते हैं, शकीला के नाम करते हैं और नसरीन के नाम करते हैं, फरजाना के नाम करते हैं और आपकी तमाम दोस्तों के नाम जो भी इस वक्त सुन रहे हैं। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप सबको ये गीत अच्छा लगेगा और यही गीत मैं नाम करना चाहूँगी मिसिस को और आपके नाम भी करना चाहूँगी और आपके साथ साथ हाजरा जी मुझे यकीन है कि ये गीत आपको भी अच्छा लगेगा।

0: जा जा रे साजना, काहे सपनों में आए जाके परदेश साजना। लता जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे। आपको अब टाइम बता देते हैं कि यूके में क्या टाइम है।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का टाइम है 12:46 और ये है ब्रेक टाइम।

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफोर्ड में मनाएं।
3: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
2: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
3: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
2: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

निके होते आंदा प्यार वेखी देवी ना विसार मसूद राणा की आवाज़ में ये गीत प्यारा सा गीत था जिसे आपने सुना और सनराइज रेडियो को सुनते हैं आप 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे आप सुन रहे हैं पूरी दुनिया में और इसके अलावा डीएबी के जरिए ब्रैडफोर्ड कीथली इल्क्लिस किप्टन लीड्स हैलिफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकाशायर ब्लैकबर्न बर्नली डार्विन नेल्सन एकरिंगटन मिल्टन कीन्स और वेस्ट लंदन में भी आप सुन रहे हैं। मैं हूं शहनाज मंसूर आपके साथ साथ हूं दोपहर दो बजे तक। प्रोग्राम के दूसरा घंटा जो है वो भी इख्तिताम को होने को आ रहा है, ख़त्म होने वाला है और जी हां जी आपका साथ हमें मिल रहा है, आपकी दुआएं और आपका प्यार जो हमें यहां तक ले आया है बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपने छोटे छोटे छोटे भाई भाई हैं हमारे बेटे हैं रुखसार, जी हाँ जी उन्होंने कहा कि आप मुझे बेटा कहा करें तो ठीक है बेटा कहेंगे, आज से आप हमारे बेटे हो गए, हमारे लाडले हमारे रुखसार सनराइज़ के लाडले रुखसार भाई, जी हाँ जी रुखसार जी बहुत बहुत वो आदत पड़ गई है ना रुखसार भाई कहने की, तो इसलिए चलिए जी आज से हम कहेंगे हमारे बेटे रुखसार जी मैनचेस्टर से आपने याद किया, आपने ढेरों दुआएं दी सलाम दिया सभी दोस्तों को और आपके दोस्तों की लिस्ट हमारे पास मौजूद है, आपके लिए गाना ढूंढ रही हूँ मैं, मिल गया तो अगले घंटे में आपका मनपसंद गीत आपके नाम और आपके दोस्तों के नाम होगा। बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह आपसे बात करके, आपने अपने तमाम दोस्तों को सनराइज़ की टीम को और हमारे तमाम सामीन को दिली दुआएं भेजी हैं, जुमा की मुबारकबाद पेश की है और अपने दोस्तों के नाम अपने गीत भी करने का कहा तो ज़रूर करेंगे अगले घंटे में। फ़िलहाल ये प्यारा सा गीत मैं नाम करने जा रही हूँ हमारे भाई हीरा खान जी आपके नाम करना चाहूँगी, आपसे बात तो नहीं हो पाई आपकी कॉल मिस हो गई लेकिन मैं जानती हूँ कि आप हमेशा की तरह अपने दोस्तों को दुआएं भेजना चाहते हैं, जुमा की मुबारकबाद दे रहे हैं अपने तमाम दोस्तों को जिनमें शामिल हैं तारिक जुल्फी हैं और बाबा जानी हैं, महबूब इलाही हैं, मलक इसहाक हैं, वाजिद हैं हरिसवील में, चौधरी मुजफ्फर हैं अब्दुल कयूम फ्राइजिंग हॉल में, अयूब चौहान हैं, जावेद मीर हैं, चौधरी आसिफ रियासत हैं, सुल्तान महमूद कराची वाले भाई हैं, चौधरी फरियाद हैं, सफ़ीउल्ला भाई हैं, शकील भाई बरले में हैं, नवीद राना हैं, चौधरी वलायत खान भी हैं, चौधरी फरियाद पाकिस्तान में हैं, तारिक भट और कियानी मुदस्सर भी हैं, परवेज़ खान हैं और आमिर शहजाद, इन सबाम के नाम आपकी जानिब से ये गीत है और मुझे उम्मीद और यकीन है कि ये गीत आपको भी अच्छा लगेगा और हमारे सामीन को भी ये गीत बहुत पसंद आएगा। ये गीत इसके अलावा मैं नाम करना चाहूँगी हाजरा जी आपके नाम भी करना चाहूँगी आपके साथ साथ, यही गीत समीना जी आपके नाम भी, हिना शौकत आपके नाम भी और मिस्टर मिस हुसैन आपके नाम भी, नदीम मंसूर भाई हम आपको भूले नहीं आपके नाम भी, फ़िलहाल यही गीत है, अगले घंटे में एक और खूबसूरत सा गीत आपके नाम होगा और आपकी दीपा आंटी के नाम होगा, सादिया के नाम होगा, शाजिया जी के नाम होगा, हाजरा जी के नाम होगा और परवीन जी के नाम होगा, ज़रूर लगाएंगे। फ़िलहाल उन सबको आपकी जानिब से अस्सलाम वालेकुम और जुमा की बहुत बहुत मुबारक और आपके तमाम दोस्तों और अहले अहबाब को भी। जी अब बेकरार है जाई बहार है आजा मोरे पालमा तेरा इंतजार है।

0: जी अब बेकरार है, चाहे बहार है आजा मोरे बालमा तेरा इंतज़ार है। बहुत ही खूबसूरत सा गीत था जिसे आप सुन रहे हैं सनराइज़ रेडियो पे 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में। इसके अलावा आप हमें सुनते हैं जी हाँ जी DAB के ज़रिए भी बहुत से शहरों में, ब्रैडफोर्ड में, कीटली में, इल्कली में, स्किप्टन में, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर में, ईस्ट लंकाशायर में, ब्लैकबर्न में, बर्नली में, डार्विन, मिल्टन कीन्स और वेस्ट लंदन में भी आप सुनते हैं हमें। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर भी 24 घंटे सुन सकते हैं और एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से के जरिए आप हमारे ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा सनराइज रेडियो पे और भी बहुत कुछ हो रहा है, धूम धड़का हो रहा है, बहुत कुछ आने वाला है, फन हो रहा है और जो है बहुत सी क्विजेज हो रहे हैं जिसके लिए आपको जो क्लब मेंबर्स है उसे ज्वाइन करना होगा बिल्कुल फ्री में। तो आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशंस और वेन्यूज और आर्टिस्ट जो आप जिनको आप पसंद करते हैं उनको आप वोट कर सकते हैं, पर इसके लिए क्लब मेंबर होना बहुत ज़रूरी है जो कि फ्री में आप सनराइज रेडियो के ऐप पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी और भी क्विजेज वगैरह भी आ रहे हैं जो कि राज आपके लिए करेंगे, बॉलीवुड के म्यूज़िक के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, आप क्या कुछ जानते हैं, आपका क्या नॉलेज है उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके करियर के बारे में। बहुत से क्विज़ ऐसे होंगे, प्राइजेस भी होंगे जिन्हें आप जो है वो हासिल कर सकेंगे और इन्जॉय करेंगे प्रोग्राम्स को। तो उसके लिए आपको मेम्बर्स बनना बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और अब है खबरों का वक्त, आइए सुनते हैं खबरें।
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
2: From the Sky News Centre at 1, the family of a British man detained in India for nearly 9 years without conviction say there's a light at the end of the tunnel as he's been granted bail. Jagtar Singh Johal from Dumbarton was arrested by Indian authorities in 2017 over alleged terrorism offences, but the 39-year-old still faces federal charges. His brother Gurpreet says it's still a guessing game as to whether they'll be reunited.
3: If the government show political will, I believe that Jagtar could be back before the end of the year. If the government don't show political will, then these cases can take up to 40 years for it to conclude.
2: Labour insists Andy Burnham isn't continuity Starmer after leaked documents revealed he's already adopted some of his predecessor's planned policies. The files from Number 10 show how Sir Keir was hoping to cling on to power. The Kremlin summoned the UK's envoy in Moscow to issue a formal protest over what it's calling further increases in weapons supplies to Ukraine. It says Russians go to the polls for the country's first parliamentary election since invading its neighbour. Mother Care's warning of a highly uncertain future. Its Middle East partners planning to close most of its franchise stores across the region next year. It's claimed prescribing exercise to people with heart problems could cut hospital admissions. Experts at the University of Glasgow have found it can reduce the risk of heart attacks by almost a fifth. And England boss Thomas Tuchel says Trent Alexander-Arnold has the chance to fight for his place in his Three Lions side and earn his trust.
4: He was not with us at the World Cup. We trusted other players. I still stick with this decision. He always said he's up for a fight. He always said he's up to fight for his place, especially for England. So it's on him to prove. And more than welcome in camp. We have a long camp. I'm sure he will show up.
2: Cole Palmer and Liverpool's 18-year-old Rio Engamoa are also in England's group for the four upcoming Nations League fixtures. They first play Spain next Saturday. That's the latest. I'm Kat Suave.

0: तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। कुमार सानू की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत हिट ऑफ द आवर आपने सुना 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे आप सुन रहे हैं हमें। मैं हुसैनाज मंसूर प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी घंटे में आन पहुंचे हैं। आप सभी का खैर मकदम है, जी आयान और खुश आमदीद, गुड आफ्टरनून और जुमा की एक बार फिर से बहुत बहुत बहुत मुबारक। पिछले दो घंटे आपने जिस प्यार और मोहब्बत के साथ हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, हमसे बातें की, हमसे मुलाकातें की, अपने दुआओं से हमें नवाजा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि इस घंटे में भी आपका साथ और आपका प्यार और आपकी दुआएं हमारे साथ जुड़ी रहेंगी, और आपकी दुआएं ही हमें यहाँ पर लेकर आती हैं और आपकी दुआएं ही लेकर हम यहाँ से जाते हैं। ऐसा ही होगा आज भी, मुझे यकीन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का जो कि हमेशा हमारा साथ निभाते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारे साथी बनते हैं, हमारे हम सफ़र बनते हैं, इस सफ़र को खूबसूरत बनाते हैं। और यादों की जो गाड़ी होती है ना, वो आपके प्यार मोहब्बत और दुआओं के साथ भरी हुई होती है हर हफ्ते। आज भी ऐसा ही है, आप साथ हैं, सफ़र खूबसूरत है, गीत खूबसूरत है और आप भी खूबसूरत हैं। तो बढ़ते हैं आपको क्या जी हाँ जी टाइम बता देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी हाँ जी, हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का टाइम है 1:08। जी हाँ, 1:08 हो चुके हैं, 8:01, और ये हमारी मुलाकात का आखिरी घंटा है। तकरीबन घंटे से भी कम हमारा और आपका साथ बचा है। जल्दी से बढ़ेंगे इस खूबसूरत से गीत की जानिब मुकेश की आवाज़ में। ये गीत मैं नाम करना चाहूँगी अपने छोटे भाई, बहुत ही प्यारे हंसमुख और बहुत ही, वो क्या कहते हैं, खुश इखलाक, प्यार मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत बांटने वाले और सभी को दुआएं देने वाले हमारे भाई। जी हाँ जी, नदीम मंसूर भाई, हमेशा की तरह आप की दुआएं हमें मिली, आपका साथ मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके लिए ये गीत है मुकेश की आवाज़ में, मुझे यकीन है कि आप इसे पसंद करेंगे। बहुत ही खूबसूरत शायरी और बहुत ही खूबसूरत मत भरी आवाज़ है मुकेश की, और आपके साथ साथ मुझे उम्मीद है कि हमारी बहन दीपा जी को भी ये गीत अच्छा लगेगा। और दीपा जी के साथ साथ हमारी बहनें हैं, आपकी खालाएँ हैं, जी हाँ जी, सादिया जी हैं और शाजिया हैं, हाजरा जी हैं और परवीन जी हैं, इन सब के नाम आपकी जानिब से और आपके तमाम दोस्तों के नाम जो भी इस वक्त सनराइज़ की नशरात को सुन रहे हैं। मुझे उम्मीद और यकीन है कि आप तमाम को, सामीन को भी ये गीत अच्छा लगेगा। छोटी सी ये जिंदगानी,

हर दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। बहुत ही खूबसूरत शायरी और सच्चाई पर मबनी थी। बिल्कुल सही जो है शायर ने लफ्ज़ कहे कि चंद दिन की ये जिंदगानी है और हम क्या क्या प्लानिंग करते रहते हैं कि हमें ये करना है वो करना है। एक पल भी अगर हम सोच लें कि ये जिंदगानी जो है बुलबुले की तरह है, कब बुलबुला जो है वो बस्ट हो जाए, फट जाए, किसे मालूम। बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे और आपको अच्छा लगा। मिस्टर मिसेस हुसैन, आपने मिस कॉल दी तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप ही के लिए था। और अब जो ब्रेक आ रही है वो भी आप ही के लिए है, ज़रूर सुनिएगा।

अहमद कुमार की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे 103.2 FM पे। और अब चलते हैं, एक और खूबसूरत सा गीत है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और ये गीत मैं नाम करना चाहूँगी, माज़ा चाहूँगी अपने अपने जो है हमारे रुखसार बेटे जो हैं, जी हाँ जी, आज से हम उन्हें बेटा कहेंगे, हमारे रुखसार बेटे के नाम करेंगे और उनके तमाम दोस्तों के नाम करेंगे जो कि लिस्ट हमारे पास मौजूद है। रुखसार जी ने कहा है कि उनके दोस्तों के लिए गीत लगा दीजिएगा, लेकिन माज़िद चाहूँगी रुखसार जी कि जो गीत आपने कहा था वो तो फिल्म ही हमें नहीं मिली अपने कंप्यूटर में, और ना ही वो गीत मिला है, लेकिन मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत है, उदास है लेकिन बहुत प्यारा गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे उम्मीद है आप इसे इंजॉय करेंगे। आपके तमाम दोस्तों के नाम करेंगे, महबूब इलाही के नाम करेंगे, फरियाद खान के नाम करेंगे, आमिर शहजाद के नाम करेंगे, हीरा खान जी के नाम करेंगे, तारिक जुल्फी के नाम करेंगे, सफ़ीउल्लाह भाई के नाम करेंगे, तारिक भट्ट के नाम करेंगे, मुदस्सर कयानी जी के नाम करेंगे, चैम्पियन, जी हाँ जी, आपके चैम्पियन, आपके दोस्त, आपके भाई परवेज खान के नाम करेंगे, काशिफ भाई के नाम करेंगे, कामरान के नाम करेंगे, शकील के नाम करेंगे, जहांगीर भाई के नाम करेंगे, राना नवीद के नाम करेंगे, और आपकी जानिब से दीपा जी के नाम करेंगे और नदीम मंसूर भाई के नाम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का जो कि हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत हैं। मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको, न दामन ही पकड़ा न मुझको बुलाया, यहां तक कि मैं चलता ही आया और उनसे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं।

यहाँ तक कि उससे जुदा हो गया मैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये अनमोल गीत, कभी ना भूलने वाला गीत, आपके गोशे गुजार किया था और आपने बहुत पसंद किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये गीत मैंने ख़ास तौर पर नाम किया था रुखसार भाई आपके और आपकी तमाम टीम के। आपने सभी को दुआएं भेजी हैं, अस्सलाम वालेकुम कहा है और जुमा की मुबारकबाद भी दी है। हमारी बात हुई हमारी प्यारी सी बहन सायरा जी आपसे, बहुत दिनों के बाद आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, फैमिली सब ठीक है। आपकी दुआओं का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने तमाम सामेईन को, सनराइज़ की टीम को और आपने तमाम सहेलियों को जो भी इस वक्त सुन रही हैं अस्सलाम वालेकुम कहा है, जुमा की दिली मुबारकबाद भी पेश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे उम्मीद और यकीन है कि आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत पसंद किया होगा और ये गीत भी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। उदास है ये भी, लेकिन ये सबका मनपसंद गीत है। तो आइए सुनते हैं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं।

ज़िहाल मस्किन मकुन बरंजिश बहाल हिजराम बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे 103.2 FM पे, और मैं हूँ शहनाज मंसूर आपके साथ साथ हूँ 2 बजे तक। बस चंद लम्हे बाकी हमारे और आपके साथ के, जल्दी से आते हैं माला की आवाज़ में, ये खूबसूरत सा गीत सुनवाते हैं हमारी प्यारी सी बहना को। जी हाँ जी, प्यारी सी बहना हाजरा जी आपके नाम करते हैं, और यही गीत हम नाम करेंगे समीना जी आपके भी और आपकी जानिब से रुखसाना के, कौसर के, नसरीन के, नायला के, शीला के और सभिया के नाम करना चाहेंगे इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आपको अच्छा लगेगा। और यही गीत मुझे उम्मीद और यकीन है कि हिना जी आपको भी अच्छा लगेगा। जीत कौर बहना बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार आपसे बात हो ही गई। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको बहुत जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप थोड़ी सी रेस्ट कीजिए, आपके लिए दुआएं हैं, अल्लाह पाक आपको ज़रूर सेहत देगा। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं और आपकी दुआओं का, प्यार का बेहद शुक्रिया। हाजरा जी आपके लिए है ये गीत।

दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे, बड़ी महंगी पड़ेगी ये जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: जी हाँ जी, हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का टाइम है 1:44, 1:44 हुए हैं और हमें लेनी है छोटी सी ब्रेक। आते हैं ब्रेक के बाद।
2: ये मैसेज मर्सिडीज बेंज वैंस की ओर से हैं, जो सनराइज रेडियो के साथ मिलकर लाए गए। यहाँ एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। यूके में गाड़ियों के काम न करने, डाउन टाइम की वजह से बिजनेस को हर वैन के लिए रोज़ाना औसतन 1,172 पाउंड का नुकसान होता है। इसलिए मर्सिडीज बेंज वैंस ने अप टाइम प्रॉमिस शुरू किया है। रोडसाइड असिस्टेंस और ज़्यादा समय तक सर्विस की सुविधा से लेकर रियल टाइम में गाड़ी की खराबी का पता लगाने और भी बहुत कुछ। इनकी कई ऐसी सुविधाएं हैं जो आपके बिजनेस को बिना रुके चलने में मदद करती हैं। मर्सिडीज बेंस वैंस हमेशा आपके साथ है। आज ही मर्सिडीज बेंस वैंस सर्च करें और उनके अप टाइम प्रॉमिस के बारे में जानें। स्टे ऑन द रोड रिपोर्ट, श्रेय देना ज़रूरी है। ये रिसर्च यूके के उन बिजनेसेस में 500 सीनियर फैसला लेने वालों के बीच की गई है जहां वैन का इस्तेमाल बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा जानकारी के लिए mbvans.co.uk/uptimepromise पर जाएं।
3: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
4: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
3: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
4: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
5: Official media partner, Sunrise Radio.

मैं हूँ भंवरा और तू है कली। ओ मन चली कहाँ चली, किशोर कुमार की बहुत ही प्यारी आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आपने सुना। और अब वक्त आता है, आता नहीं आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। जी हाँ जी, हमारी मुलाकात यहीं तक थी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप तमाम साथियों का, भाइयों का, बहनों का और बेटों का भी, जिन्होंने प्रोग्राम में शिरकत की, हमारी हौसला अफजाई की, हमें अपनी दुआओं से नवाजा और अपने साथ का एहसास दिलाया। आप हमारे साथ रहे ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने प्रोग्राम को सुना, आपने गीतों को एंजॉय किया, उसके लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी फुल जो कहते हैं ना कीमत वसूल हो गई। आपके साथ का, आपके प्यार का, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने चाहा, ज़िंदगी ने वफा की, आपकी दुआओं ने साथ दिया, तो इंशाल्लाह फिर आएंगे इसी मकाम पे, इसी जगह आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते 11 और 2 के दौरान। यादें सलामत रहें, रिश्ते जो हैं वो भी सलामत रहें, और हमारी और आपकी यादें जो हैं वो भी बाकी रहें, सलामत रहें। तो हम और आप मिलते रहेंगे सनराइज रेडियो पे। तो आप सबका और हमारा अल्लाह ने केवान, बाय फॉर नाउ, टेक केयर, खुदा हाफिज, गुड बाय और हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे, एंजॉय द वेदर, एंड विल मीट अगेन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।

हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम ब्रैडफोर्ड और इसके गिर्दोनवा में। इसके साथ साथ अगर आप हमें दुनिया के किसी और हिस्से में सुन रहे हैं तो उसके मुताबिक हम आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अगर आप इंडिया में सुन रहे हैं तो आपको हम कहेंगे आपका स्वागत करते हैं हम स्वागत। इसके साथ साथ पाकिस्तान में सुन रहे हैं तो आपको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन इंग्लिस्तान में तो आप सुन ही रहे हैं। मतलब आप इंग्लिस्तान में अगर हैं और हमारा रेडियो स्टेशन सनराइज रेडियो नहीं सुन रहे तो फिर और क्या सुन रहे हैं? घर वालों की बातें सुन रहे हैं या अपनी वाइफ की बातें सुन रहे हैं या वाइफ अपने हस्बैंड की बातें सुन रही हैं? बहरहाल आप सारी बातों को एक साइड पर रख दीजिए और सुनिए सनराइज रेडियो 103.2 FM, इसकी फ्रिक्वेंसी है। इसके साथ साथ अगर आप हमें इंग्लैंड में सुन रहे हैं तो ऑफ कोर्स हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, आपके शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं, आपका दिन रात कैसा, ये दिन रात एक किया हुआ है या दिन और रात अलग अलग से हैं? कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर इतनी मेहनत करते हैं कि उनका दिन और रात का पता ही नहीं चलता। वो या तो रात को काम कर रहे होते हैं तो दिन को घर वापस जा रहे होते हैं, और अगर दिन में काम कर रहे होते हैं तो रात को घर वापस जा रहे होते हैं। बहरहाल आप किस कैटेगरी से हैं, आपका ताल्लुक किस कैटेगरी से है ये हमें ज़रूर बताएगा। स्टूडियो का नंबर हमेशा की तरह आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूँगा। आप हमें अपने टेलीविज़न पर भी सुन सकते हैं, आप हमें रेडियो प्लेयर पर सुन सकते हैं, ऑनलाइन ऑफकोर्स सुन सकते हैं sunriseradio.fm पर, और इसके साथ साथ आप अपने Amazon Kindle Fire पे भी सुन सकते हैं सनराइज रेडियो की नशरियात। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर तकरीबन 3 घंटे। नेक्स्ट आइंदा जो 3 घंटे हैं हमारा आपका साथ रहेगा, और तकरीबन मैंने इसलिए कहा है कि इंसान है, आगे पीछे हो सकते हैं हम, मतलब कुछ भी हो सकता है। बहरहाल ब्रैडफोर्ड और इसके गिर्दोनवा में साथ साथ जो हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले, हमारे सुनने वाले हमें मैनचेस्टर में सुन रहे हैं तो आप हमें DAB के ज़रिए सुन रहे हैं, और लीड्स में भी DAB के ज़रिए सुन रहे हैं। इसके साथ साथ ओल्डम, रॉसडेल, ईस्ट लंकशायर और मिल्टन किंग्स, वाओ, मिल्टन किंग्स में आप हमें सुन पा रहे हैं DAB डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हम सिर्फ 24 घंटे नहीं, साल के 365 दिन नहीं, बल्कि हमारा और आपका साथ उम्र भर का है। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses, free health and social care courses, free childcare courses, free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.

ओके ओके सो बात यह है कि गाने तो हम सुनते रहते हैं, इसके साथ साथ हम मूवीज भी देखते रहते हैं, मूवीज के साथ साथ हम ड्रामे भी देखते रहते हैं। मतलब क्या क्या इंसान देखे, सारा दिन मोबाइल भी देखते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप रेडियो सुनते हैं तो रेडियो तो हम करते हैं बातें, बातें सुनने के लिए हम रेडियो ऑन करते हैं। बाज़ औक़ात हम बहुत बोर हो रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार रेडियो पे क्या चल रहा है, या तो खबरें या तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और आपको हर घंटे के बाद जो हमारा खबरनामा मिलता है उसमें आपको खबरें मिलती हैं, ट्रैफिक की अपडेट मिलती हैं, जिससे आप बाखबर रहते हैं कि दुनिया में और आपके इर्द गिर्द, आपके शहर में, आपके इलाके में क्या क्या हो रहा है। इससे सनराइज आपको अपडेट रखता है। इसके साथ साथ आपको गाने तो हम सुनाएंगे, लेकिन एक चीज़ हमारे शो में आज नहीं होने वाली है, वो ये है कि फरमाइशी गाने मैं को नहीं चलाने। अगर आप फरमाइश करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके लिए मुझे कॉल मत कीजिएगा, लेकिन आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हाज़िर हैं। आप कभी भी हमसे बात करें, और बात करने के लिए नंबर तो आपको पता ही है, और हमारे स्टूडियो का नंबर है 01274306666, यानी कि 4 दफ़ा 6, मतलब 01274306666। आप हमें स्टूडियो में अभी कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि व्हाट आर यू अप टू।

मुझे याद है कि एक जमाना हुआ करता था कि जब बड़ा मायूब समझा जाता था कि कोई हमें फॉलो कर रहा है, कोई आपका ताकुब कर रहा है। आजकल हर दूसरा बंदा दूसरे बंदे को यही कहता है कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। आजकल हम खुद किसी को दावत दे रहे होते हैं कि भाई हमें फॉलो करें, मतलब मैं जहां जहां पे जाऊं, मैं जो कुछ भी करूं, मैं जो कुछ भी खाऊं, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। मतलब आजकल की जिंदगी इस तरह की हो चुकी है। बहरहाल आप भी हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, और इसके साथ साथ हमेशा की तरह आप हमें सुन पा रहे हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू भी, sunriseradio.fm।

राइट जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी, आप हमें कॉल करें 01274 306666 पर। अच्छा, ये हमारा एक कह लीजिए कि ये देसियों का एक मामला है कि हम लोग ईमेल्स और टेक्स्ट वगैरह पर बहुत कम यकीन रखते हैं। हम अगर ईमेल कर भी दें किसी को गलती से या फिर उनको हम मैसेज कर दें टेक्स्ट मैसेज, एक तो ये धड़का सा लगा रहता है कि टेक्स्ट मैसेज अगर आपने किया है तो वो सीन हो गया है या नहीं सीन हुआ। अगर सीन हो गया है तो वो बंदा रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। और इसके साथ साथ ईमेल्स पे तो खैर ये तरीका नहीं है कि आप चेक कर सकें कि किसी ने आपकी ईमेल पढ़ ली है या नहीं पढ़ ली। बहरहाल होता यह है कि हम लोग ईमेल्स पे और टेक्स्ट पर ये इन चीज़ों पे बहुत कम बिलीव करते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी को ईमेल किया तो वो ईमेल कहीं पर गवास गई है, मतलब कहीं पे खो गई है, उसका कोई नामो निशान नहीं है कि अगले बंदे को पहुंच गई है या उसको रिस्पॉन्ड करने में कितना वक्त लगेगा। लिहाजा हम बिलीव करते हैं फ़ोन कॉल्स पर। हम कहते हैं कि यार फ़ोन करो यार, क्या है यार, मतलब इसमें से पहले चेक करो, मतलब डायरेक्ट बात जब तक बंदे से ना हो हमें तसल्ली नहीं होती। तो बहरहाल आप अपनी तसल्ली रखिए और हमें कॉल कीजिए 01274306666 पर। आपकी फरमाइशें बहरहाल हम नहीं ले रहे, लेकिन अगर आपकी कोई ये फरमाइश है कि आपने मेरे थ्रू किसी को आई लव यू कहना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और उनका नाम बता सकते हैं। मैं आपका जो पैगाम है, मोहब्बतों भरा पैगाम, वो पूरी ईमानदारी से थर्ड पार्टी तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।

बेहद बेहद बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। लाइंस बहुत बिजी, अगर आपकी कॉल नहीं मिल पा रही तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बहुत आपसे माजरा चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि आज जो आपकी कॉल्स आ रही हैं वो इतनी भरपूर आ रही हैं कि उसमें मुझे सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यकीन कीजिए, ये जो एक शो करना है ना, ये जो एक रेडियो का शो करना है, ये ऐसा है कि जैसे आप जहाज़ चला रहे हैं। मतलब आपको हर चीज़ के ऊपर, आप इतने सारे बटन्स आपके सामने होते हैं, आपको हर बटन के ऊपर नजर रखनी पड़ती है कि अच्छा कोई बटन आगे पीछे ना हो जाए, किसी टाइमिंग गलत ना हो जाए। तो बहरहाल आपकी कॉल्स का शुक्रिया। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी कॉल्स सबकी जो है वो मैं रिसीव करूंगा और आपसे बात भी होगी। अगर आपको दोबारा डायल करना पड़ रहा है तो उसके लिए माजरत, और अगर आप दोबारा डायल करते करते नहीं थक रहे तो आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया।

0: just don't care.
1: The greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230300 ब्रेडफोर्ड 7230300।
4: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतिमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 01274735043 पर कॉल करें।
5: Experience something truly spectacular as the internationally renowned Flower Carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.

0: No, sorry, mate.
1: No, we don't have that part.
2: Have you tried down the road?
3: We can get it in, but it won't be for a few days.
4: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
5: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
6: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
5: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
6: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

सियाने कहते हैं कि आपकी जो नेटवर्थ होती है, किसी भी इंसान की जो नेटवर्थ होती है, वो अक्सर देखा जाता है ना कि किसी की क्या वर्थ है, वर्थ से मुराद जो नेटवर्थ है कि उसके पास पैसे कितने हैं, वो कितना अमीर है, उसका बैंक बैलेंस क्या है। सियाने कहते हैं कि किसी भी इंसान का जो बैंक बैलेंस होता है, जो नेटवर्थ जिसकी होती है, वो उसका नेटवर्क होता है। जिस तरह आपका नेटवर्क सनराइज रेडियो है, ये आपका फैमिली नेटवर्क है, और जो हमारा नेटवर्क है वो आप हैं। हमारा तो बैंक बैलेंस यही है, हमारा जो ख़जाना है वो आपकी मोहब्बतें हैं, और जो आपका ख़जाना है वो सनराइज रेडियो है, जो आप डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू सुनते हैं, और जिसमें हमारी जो मोबाइल ऐप है वो शामिल है, और इस ऐप के थ्रू आप हमें डायरेक्ट सुन सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई कह लीजिए कि थर्ड मैन या थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, ये आपका और हमारा डायरेक्ट राबते का एक सोर्स है, जिसके थ्रू आप से हम कलाम होते हैं और हम आपसे हम कलाम होते हैं। हम कलाम होने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया से के थ्रू हमें रब्ता हमसे रब्ता कर सकते हैं, और sunriseradio.fm हमारी वेबसाइट है, और यहाँ पर आपको हमारे सोशल्स के तमाम लिंक्स मिल जाएंगे। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

अच्छा जी, कहते हैं कि मोहब्बत की कोई ज़ुबान नहीं होती, मोहब्बत की सिर्फ एक ज़ुबान होती है, और वो ज़ुबान होती है कि किसी भी ज़ुबान में अगर आप मोहब्बत करना चाहते हैं तो उसको प्यार से बोला जाए तो वही मोहब्बत की ज़ुबान होती है। मोहब्बत की ज़ुबान वही होती है जो आपकी मादरी ज़ुबान होती है। अगर आप अपनी मादरी ज़ुबान से प्यार नहीं करते तो आप प्यार कैसे कर सकते हैं। तो आपकी मादरी ज़ुबान चाहे पंजाबी है, उर्दू है, हिंदी है, उसके अलावा पहाड़ी है, पोटोहारी है, या पश्तो है, या किसी भी किस्म की आपकी ज़ुबान है, अगर आप वो ज़ुबान बोलने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप शायद मोहब्बत करने में भी किसी हद तक कंफर्टेबल ना हो। मोहब्बत तो हमेशा अपनी ही ज़ुबान में उसका मज़ा आता है, और चाहे वो मोहब्बत हो चाहे वो लड़ाई हो, जब इंसान लड़ाई भी करता है, गुस्से की हालत में भी होता है, तो वो अपनी मादरी ज़ुबान में ही लड़ाई करता है, तो उसको अजीब सी तस्कीन मिलती है कि शायद ये सही तरीका है लड़ाई करने का। मतलब हम लोग जो अपने अपने वतनों से यहाँ पर आकर आबाद हैं, अपनी अपनी ज़ुबानें बोलते हैं, जब हम लड़ाई करने की कह लीजिए स्टेज पर आते हैं, किसी से लड़ाई करना चाहते हैं या आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, तब तक हमें तसल्ली नहीं होती जब तक हम अपनी ज़ुबान में उनसे आर्ग्यूमेंट ना कर लें, या उनसे हम लड़ाई ना कर लें, उनसे गिला ना कर लें। ये जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है, हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर जो बोलते हैं, वो अपनी ज़ुबान में लड़ाई करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। बहरहाल ज़ुबानें सारी अच्छी हैं, और जो भी ज़ुबान मोहब्बत और प्यार से बोली जाए वो सारी अच्छी ज़ुबानें हैं, सारी हमारी ज़ुबानें हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने किस ज़ुबान से हमसे बात करनी है, आप कोई भी ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि उसमें मोहब्बत ज़रूर शामिल कीजिएगा। स्टूडियो का नंबर है 01274306666। आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज़ रेडियो।

अच्छा जी, वक्त की सबसे ज्यादा खूबसूरत बात ये होती है कि वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो गुजर ही जाता है। हालांकि वक्त की रफ्तार एक ही होती है, जब आप खुश होते हैं तो बहुत जल्दी गुजर जाता है, लेकिन अगर आप खुश नहीं होते हैं, अगर आप परेशान हैं, बेजार हैं, या आपको किसी चीज़ में नुकसान पहुंच चुका है, तो वही वक्त आपके लिए जो एक सेकंड है वो एक घंटा बन जाता है, एक घंटा एक दिन बन जाता है। तो इसी तरह जब आप किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो हर लम्हा, हर पल, हर सेकंड आपके ऊपर एक पहाड़ जैसा बोझ लेकर आता है। आपको लगता है कि ये वक्त गुजर क्यों नहीं रहा। अभी हमारे शो को भी देखें, आपके साथ साथ चलते चलते हमारा वक्त कितना अच्छा और खुशगवार गुजर रहा है कि हमें वक्त का पता ही नहीं चला। वक्त भी गुजर जाएगा, आप भी जहां पर जा रहे हैं, जहां जाना चाहते हैं, आप भी गुजरते गुजरते वहां पहुंच जाएंगे, और हम भी आपसे बात करते करते इस शो को अलविदा कहकर फिर अगले शो की इजाज़त लेकर आपसे हम अलविदा हो जाएंगे, आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी तो वक्त है, अभी आपने जाना कहीं नहीं है, क्योंकि आपने रहना है हमारे साथ साथ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हैं आपके साथ साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बरतानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Experience something truly spectacular as the internationally renowned Flower Carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.

अच्छा जी, आपकी कॉल्स का बेहद शुक्रिया। अभी हमारे एक दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं शायद जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाता हूं। तो भाई आई विश के मेरे पास कोई ऐसा तरीका होता तो मैं आपको दिखा देता कि स्टूडियो के अंदर जो ये जो लाइंस फ्लैश कर रही हैं टम टम टम टिका टिका टिका टम टम टम, ये मैं आपको दिखा सकता लाइव। लेकिन वो भी दिखा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन देखिए, चूँकि कॉल्स की जो नंबर ऑफ कॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए और जिससे भी बात होती है वो भरपूर बात हो रही होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर बात हो, क्योंकि हम भी यहाँ हैं और आप भी यहाँ हैं। हम ना ही हमारा ये आखिरी शो है और ना ही आपकी आखिरी कॉल है। हम बातों का सिलसिला भी जारी रखेंगे और म्यूज़िक भी सुनेंगे और इसके साथ साथ मशहूरियाँ भी सुनेंगे। देखिए, ये जो मशहूरियाँ होती हैं ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। गाने तो सारे लोग एक दूसरे को डेडिकेट करते हैं, लेकिन मैं आप सबको, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको आज मशहूरियाँ डेडिकेट करूँगा। जितने भी एड्स हैं ये मैं आपको डेडिकेट करूँगा। मैं कहूँगा ज़रा इनको गौर से सुने और सुने कि ये क्या क्या चाहते हैं और क्या क्या आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप की कॉल नहीं मिल रही तो मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूँ। वो मशवरा मुफ्त है और मुफ्त मशवरा देने के लिए आपको थोड़ा सा पैसे तो आप मुझे नहीं देंगे और ना ही किसी और किस्म की इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक छोटा सा काम करेंगे कि मैं आपको थोड़ी देर बाद वो मशवरा बताऊंगा, और मशवरा बहुत फ्री में है, ये जहन में रखिएगा। उसका कोई नुस्खा नहीं है, उसका मतलब कोई उसकी कीमत नहीं है। वो मशवरा मैं आपको फ्री में देने वाला हूं, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा काम करना है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं 01274306666 पर। अगर आपकी इस नंबर पर कॉल नहीं मिल रही तो मेरे पास एक बहुत मुफीद मशवरा है। वो क्या है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड।

0: तो लीजिए हम आपको ये देते हैं मशवरा, और वो मशवरा ये है कि अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही फॉर सम रीज़न, या मैं उठा नहीं पा रहा हूँ फॉर सम रीज़न, वो रीज़न यही है कि कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और बंदा मैं कल्ला ही हूँ, इंसान मैं एक हूँ, और वो कहते हैं कि एक जिंदली तो दो हज़ारा, बंदा मैं अकेला हूँ और कॉल्स आप लोग बहुत ज़्यादा हैं, मैं अकेला हूँ आपकी कॉल्स लेने वाला और मैं वन बाय वन ही कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे बात हो पाए। लेकिन अगर आपसे ये मेरी बात नहीं हो पा रही तो आप एक काम कीजिएगा, आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में जाइएगा। मतलब आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि आप sunriseradio.fm पर जाइए और उसके बाद हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इनमें से किसी एक के थ्रू भी आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट यूट्यूब, लेकिन आप बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, इन पर आप हमें डीएम कर सकते हैं और वहां पर भी आपसे हमारी बात हो पाएगी। तो ये एक बहुत मुफीद किस्म का मशवरा मेरे पास था, तो मैंने कहा चलो एक तो मशवरा भी मुफ्त है और दूसरा ये काम भी मुफ्त है। मतलब इसमें आपको कॉल करने को पैसे नहीं लगेंगे, वैसे तो आजकल इतने लगते नहीं हैं, फ्री नेटवर्क है, मतलब कहीं भी आप कहीं भी लोकल नेटवर्क पर हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही फ्री है। आपने बैठकर मैसेज करना है और हमने पढ़ लेना है ऑन एयर आपका मैसेज, और आपके दिल की जो भड़ास है, भड़ास से मुराद है कि जो आपकी चाहत है, वो जो डुल डुल के आ रही है हमारे पास, उसको हमने समेट कर अपने जो आपके अल्फाज हैं उनको आवाज़ देनी है और वापस आप तक पहुंचाने हैं और आपके चाहने वालों तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो। अगर आपको अभी तक मेरा नाम पता नहीं चला तो मैं आपको वो भी थोड़ी देर में बता देता हूँ, स्टे ट्यून्ड।
1: English kid, keeping it grilly, representing, this is how we do it.

0: This is a message from Mercedes-Benz Vans in association with your very own Sunrise Radio. When you run your own business, your van isn't just transport, it's your livelihood and reputation. That's why Mercedes-Benz Vans created the Uptime Promise, a complete suite of business advantages. Things like 24/7 roadside assistance, extended workshop hours, real-time vehicle monitoring. In fact, everything you need to stay in control of your van downtime and keep your business moving. Mercedes-Benz Vans has got your back. Search Mercedes-Benz Vans today and discover their uptime promise. TNCs apply. The Mercedes-Benz Vans uptime promise is subject to eligibility criteria, vehicle compatibility, and servicing with the Mercedes-Benz authorized repairer. Terms and conditions apply. Learn more at mbvans.co.uk/uptimepromise.
1: गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
2: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
1: चाचा केड़ा चाचा?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकने ती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
2: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
3: The classic hit, Flashback. Flashback, as we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

राइट ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर हुआ चाहता है प्रोग्राम का एख्तिताम। ओके, यहाँ पर मुलाकात जो हमारी पिछले 3 घंटे से जारी थी वो अब उसका कह लीजिए कि एख्तिताम हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अंटिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखा कीजिए, अपने साथ साथ अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, और सबसे अहम, सबसे ज़रूरी अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का, अपने माँ बाप का। क्योंकि माँ बाप दुनिया में इंसान की 2 आंखों की तरह होते हैं। अगर एक आंख देखना बंद कर दे तो दूसरी आंख उसका काम देती है, लेकिन अगर दोनों आंखें देखना बंद कर दें तो इंसान की जिंदगी एक अंधेरा बन जाती है। उसको दिखाई कुछ नहीं देता, उसको सुनाई भी कुछ नहीं देता। अपनी आंखों की हिफाजत किया कीजिए, अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों, रफका और अपने अजीज़ो अकारब का ख्याल रखा कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London. With even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: असिस्टेंस, वर्कशॉप के बढ़े हुए घंटे और गाड़ी की रियल टाइम मॉनिटरिंग। असल में इसमें वो सब कुछ है जो आपको अपनी वैन के डाउन टाइम को कंट्रोल में रखने और अपने बिजनेस को चालू रखने के लिए चाहिए। मर्सिडीज बेंज वैन्स हमेशा आपके साथ है। आज ही मर्सिडीज बेंज वैन सर्च करें और उनके अप टाइम प्रॉमिस के बारे में जानें। नियम और शर्तें लागू। मर्सिडीज बेंज वैन्स का अप टाइम प्रॉमिस, पत्राता के नियमों, गराई की कंपैटिबिलिटी और मर्सिडीज बेंज के अधिकृत रिपेयरर से सर्विसिंग करवाने पर निर्भर करता है। नियम और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए mbvans.co.uk/uptimepromise पर जाएं।
1: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
2: Official media partner, Sunrise Radio.
3: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
4: बड़ी तकरीबात के लिए जना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
3: छोटी गैदरिंग के लिए जना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
4: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
3: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 01274733732। जना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?
6: I know what you're looking for. Me?
7: Mm-hmm.
6: I'm smart. I'm definitely sexy.
7: No.
6: I can make you laugh. I am strong. बस वो प्यार व्यार का थोड़ा प्रॉब्लम है, पढ़ा लिखा मरा।
7: Stop it, Karan.
6: Come on, it's the truth.
7: Stop it.
6: It's the truth, you know it.
8: सच कहना, सच कहना।

0: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
1: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
0: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
1: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रैडफर्ड।
0: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
2: तेरी गलियां
3: कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
4: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
3: चाचा केड़ा चाचा?
4: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
4: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274-488-935।
5: One, two, three, four.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
1: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
0: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
1: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
0: बुकिंग और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01-274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाएं रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 01-274-735-0043 पर कॉल करें।
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: को दोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको डबल सवाब देंगे, एक तो सदका करने का और एक सुला रहमी करने का। एक सदका जो आपने दिया है अपने रिश्तेदारों को, एक उनको सदका करने का सवाब और दूसरा सिला रहमी। चूंकि आप उनके ऊपर सदका करेंगे तो ऑफ कोर्स दैट विल नेचुरली ब्रिंग यू क्लोजर टू ईच अदर, द बॉन्ड बिटवीन यू विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड देयरफॉर नेचुरली यू विल स्टे इन यूनिटी फार लॉन्गर। इत्तेहाद के साथ, प्यार के साथ रहेंगे और ज़्यादा लंबी देर। तो इसी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका वो बाग का सदका कबूल करके फिर उसको फरमाया कि ऐसे करो, इसको अपने रिश्तेदारों के अंदर इसको तकसीम कर दो। तो खैर, ब्रेक की तरफ जाने से पहले खुलासा कलाम ये है कि अगली मर्तबा जब आप कोई सदका करें, कोई खैरात करें, किसी को कोई तोहफा दें, तो देखो कि मैं आया वो चीज़ जो मुझे नापसंद थी या मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, या अपने घर से वैसे निकालना है, या अपने घर के अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, कचरा जमा हो जाता है, तो वो जमा हो गया है, अब उसको गेट रिड ऑफ करने की नीयत से, बजाय गेट रिड ऑफ करने के हम सदका की नीयत उस वक़्त कर लेते हैं। हालांकि सही चीज़ तो ये है कि ठीक है, वो भी अच्छी बात है, बजाय फेंकने के इंसान किसी को दे दे, किसी के दिन रात उससे बसर हो जाए, लेकिन सही तो ये है कि अल्लाह ने जब आपको फरावानी दी हुई है तो उस फरावानी को मद्देनज़र रखते हुए अच्छे हालात के अंदर और अच्छे कपड़े, अच्छा खाना पीना, अच्छा लिबास, ये अगलों के ऊपर भी सदका करना चाहिए। ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर इस मौजू के ऊपर भी बातचीत करेंगे। और अगर आप भी फ़ोन इन करना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो का नंबर 01274306666 01274306666। मैं हूँ आपका मेहज़बान मौलाना फजल दाद और ये है सनराइज़ रेडियो 103.2 FM 100.6 FM अक्रॉस द होल ऑफ वेस्ट यॉर्कशायर। इसी के साथ
1: Have you tried Carotino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Carotino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Carotino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Carotino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
2: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
3: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
2: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
3: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
2: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 01274733732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
4: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
5: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन, दफन, फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
6: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quiet

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर आपका मेहज़बान मौलाना फजलदाद, और हमारा ये प्रोग्राम सनराइज़ रेडियो के ऊपर हर जुमा की शाम को 8 बजे से 9 बजे तक यूके टाइम लाइव हुआ करता है। और काफ़ी साथियों ने अभी याद दहानी कराई, थैंक यू वेरी मच भाई फिरोज़ ऑस्ट्रेलिया से एज़ वेल, के नातें लगाई थी, जस्ट नीडेड अ क्विक ब्रेक। तो इंशाल्लाह दोबारा वापस आपकी खिदमत में हाजिर, वंस अगेन इन योर प्रेजेंस। I was speaking about a very important principle that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala ne ek bahut hi aham hame ek qaida diya hai, aur wo ye hai ki jo cheez aapko pasand ho wo dusre ko do, jis aur fir उलमा इसकी तफसीर यहाँ तक बयान करते हैं कि ये सिर्फ सदक़े खैरात और इन चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि हर वो चीज़ जो इंसान से सादिर होती है, एवरी सिंगल थिंग दैट एमिनेट्स फ्रॉम दिस पर्सन। दिस वर्स इज़ नॉट स्पेसिफिक रिगार्डिंग दोज थिंग्स दैट यू गिव अ सदक़ा अ खैरात, बट इट इज़ एवरी थिंग दैट एमिनेट्स फ्रॉम यू, your good akhlaq. So do to others what you would like to be done to yourself, what you wish, that is respect, you give to others, what you wish is love. Every one of us craves attention, we want appreciation, we want love, we want respect. So all those tangible and non-tangible things that are in this world, everything that you love, then a true mu'min is that mu'min who will give to others exactly what he or she wants for themselves, loves for themselves. Jo insaan ko khud pasand ho aur wo khud un cheezon ko chahta ho, farmaya kamil mu'min ki nishani aur achhi neki usko kehte hain ki insaan wo de de dusron ko, har ek chahta hai ki लोग मेरी इज्जत करें, मेरे साथ प्यार मोहब्बत से पेश आए, मेरे साथ अच्छे अखलाक का बर्ताव हो, मेरे सामने जो बात हो वो मेरे पीछे ही हो। तो हूबहू जिस तरह आप अपने लिए ये चीज़ें चाहते हैं, तो हमें हुक्म है कि आप दूसरों के लिए भी यही चीज़ चाहें, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, चाहे आप उसको जानते हो या न जानते हो, मर्द हो औरत हो, दुनिया के जिस खित्ते का हो, वेयर एवर दैट पर्सन इज़ फ्रॉम, वेदर दैट पर्सन इज़ अ मुस्लिम नॉन मुस्लिम, वेदर दैट पर्सन इज़ नोन टू योरसेल्फ और अननोन टू योरसेल्फ, एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग, यू मस्ट have this principle in life in your mind that I must give them, you know, people say treat them. Treat is very, very limited definition. You must give them. You give them love. You give them respect. You give them sadaqah. You give, so whether it's verbal, physical, or even mental, in your mind you give them du'as. हर एक चाहता है कि लोग मेरे लिए अच्छी दुआ करें, मेरे बारे में अच्छा ही सोचें। तो फरमाया आप लोगों को भी वही नज़रिए से आप लोगों को दुआएं देते रहें। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बड़ी तरगीब दी है, फरमाया हदीस पाक में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, जो शख्स किसी दूसरे शख्स के लिए दुआ करता है तो अल्लाह के फरिश्ते वहाँ बैठकर कहते हैं वलक मिस्लु ज़ालिक, आपके लिए भी इसी तरह हो, आपके लिए भी इसी तरह हो। एक शख्स वो दूसरे के लिए दुआ करता है, या अल्लाह इस शख्स को तू सेहत दे दे, तो इसकी दुआ उस शख्स के बारे में कबूल हो या न हो, लेकिन फरिश्ते वहां इस शख्स के लिए कहते हैं, या अल्लाह इसने जो दुआ की थी दूसरे शख्स के लिए, या अल्लाह हम दुआ करते हैं इसको भी वो दे दे, वल्लाका मिस्ल दालिक, आपको भी इस तरह की दुआ मिले। इसी वजह से लतीफ़े के तौर पर हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे, फरमाता कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, इफ़ यू आर इन नीड ऑफ एनीथिंग, तो उस वक़्त आप दूसरे शख्स के लिए उस चीज़ की दुआ कर लो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इम्तिहानात हैं, तो आप दुआ कर लो, या अल्लाह ये जितने भी तालिबे इल्म इधर हैं, या अल्लाह इनको आला नंबरात से पास कर दो, इनके लिए इम्तिहान का वक़्त आसान कर दे, और या अल्लाह इम्तिहान के वक़्त जो परेशानी उस वक़्त इंसान के ऊपर जो नर्वसनेस होती है, इनको काम करके इनको सुकून इत्मीनान नसीब कर। अब आपने उनके लिए दुआ की, तो यहाँ अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं, वल्ला के मिसल दालिक, या अल्लाह इसको भी ये तमाम का तमाम नसीब कर दे। तो उस्ताज़ मोहतरम फरमाते कि जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो चीज़ आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते आपके लिए करेंगे, आपको वो ज़रूर मिलेगी। लेकिन वापस उस नुक्ते पर आना चाहता हूँ, कमिंग बैक टू माई पॉइंट, एंड द पॉइंट इज़ दैट वट एवर यू वॉन्ट फॉर योर सेल्फ, वट एवर इज़ मोस्ट बिलीव टू यू, वट एवर यू फील इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट, that is the thing that you are to give somebody else. This is the highest levels of good deeds, highest caliber of good deeds. The greatest of the sincerity comes from these. Isse aala tareen akhlaq paida hote hain. वक़्त मुख्तसर है, लेकिन अगर साइकोलॉजी के अंदर जाते हैं, इफ़ वी गो टुवर्ड्स द साइकोलॉजिकल थिंकिंग बिहाइंड दिस, इट इज़ दैट द ग्रीड ऑफ द दुनिया बिगिंस टू डिक्रीज फ्रॉम यू, एंड यू बिगिन टू गिव इम्पोर्टेंस टू अदर पीपल। दिस वॉज समथिंग आई रेड, दिस एप्पल और दिस ऑरेंज और दिस कशन आई रेडी लाइक्ड, बट आई एम गोइंग टू गिव इट टू my auntie, my uncle, my father, my brother, my sister, my neighbor, whoever it may be. And slowly over time, that greed inside a person of being possessive over your valuable possessions, that greed begins to decrease. वो चीज़ें इंसान से आहिस्ता आहिस्ता उस दुनिया की सख्त तरीन जो गहरी मोहब्बत है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जाती है। इसी वजह से दूसरी हदीस के अंदर जब हम देखते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने जब सदका किया था, फरमाया आपके पास जो रह गया है वो असल वो रह गया है, वरना जो आपने दे दिया अल्लाह के रास्ते में वो आखिरत के अंदर आपके पास वापस आया है, आपके बैंक के अंदर वापस आया है। अगेन द प्रॉफिट वॉज ट्राइंग टू एनकरेज आयशा दैट गिव वट एवर यू लाइक, वट एवर यू फील यू हैव। वक़्त मुख्तसर है, ऐसे करते हैं दुआ के साथ आज के इस सेशन को ख़त्म कर लेते हैं दोबारा। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه اجمعين يا رب العالمين تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں چاہے وہ روحانی بیمار ہو جسمانی بیمار ہو یا رب العالمین تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما جتنے بھی پریشان حال ہیں اور جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جتنے بھی مظلومین دنیا کے اندر ہیں جہاں کہیں بھی مظلومین ہیں اور جس انداز میں بھی ظلم کیا جا رہا ہے ان کے اوپر یا اللہ تمام مظلومین کی تو مدد فرما یا اللہ ان کی حفاظت فرما ظلم سے ان کو نجات نصیب فرما اور جو ظالمین ہیں یا اللہ تو ان کو سچی اور صحیح سمجھ دے دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جائیں یا اللہ जितने भी मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं उन सब की बख्शिश और मगफरत फरमा और हमारी जब मौत का वक़्त आए तो या अल्लाह तू हम सब को खात्मा बिल ईमान नसीब फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले सच्चे और सच्चे अखलाक तू हम सब को नसीब फरमा और अखलाक के रजीला से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर की दुआएं मांगी हैं उन तमाम के अंदर हिस्सा नसीब फरमा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से हिफाजत मांगी है उन तमाम चीज़ों से तू हम सब को हिफाजत नसीब फरमा। और सबसे बड़ी बात या अल्लाह वो तेरी रजामंदी है दुनिया और आखिरत के अंदर तू हम सब को अपनी रजामंदी नसीब फरमा। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين। मैं हूँ आपसे मुखातब आपका मेहजबान मौलाना फजलदाद और हमारा ये प्रोग्राम हर जुमा की शाम को 8 बजे से 9 बजे तक यूके टाइम लाइव हुआ करता है और फिर पूरे दुनिया के अंदर आप सुनते हैं मुख्तलिफ अवकात के अंदर आपके वक़्त के लिहाज से। आई एम योर होस्ट मौलाना फजलदाद एंड दिस इज़ आवर लाइव प्रोग्राम एवरी फ्राइडे इवनिंग बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock। इसके अंदर आप भी हिस्सा ले सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर 01274306666। दिस इज़ सनराइज रेडियो 103.2 FM 100.6 FM। ख़ुद भी सुनिए दूसरों को भी बतलाइए। इसी के साथ वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
2: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day. This is Sunrise Radio. On the hour, every hour. This is Sunrise Radio Network News.
3: Insisted he's telling the truth about a conversation with the king in the days after her death. In his book, Earl Spencer claims the then Prince Charles told him Diana would be forgotten soon enough. Buckingham Palace has hit back at those remarks, saying grief can colour memory. But Earl Spencer's told the BBC the king must be embarrassed.
4: I can tell you here and now, those are exactly the words he said. I've only ever had 2 calls on the line with Prince Charles at any stage of my life. I was hyper alert to what he was saying, and those are precisely the words he said.
3: The boss of the UK's air traffic control system has outlined what caused last week's IT meltdown.
5: We had a very obscure software error where essentially 2 processes collided in the space of about a millisecond. It was actually a millisecond window. It caused some corruptions in one of our main systems. It was a very small software bug.
3: Martin Rolfe has been speaking about the findings of a preliminary report into what went wrong. More than 2,000 flights were cancelled, while hundreds of thousands of passengers were affected. The chaos triggered a furious reaction from airlines, some of whom called for Mr. Rolfe's resignation. A 13-year-old girl who disappeared a week ago has been spotted on CCTV 2 days after she left home. Lilia from Bolton was seen eating at a McDonald's in Manchester city centre. A teenager has been jailed for 2 years for piloting a deflating mega dinghy across the English Channel. A court scene footage of 19-year-old Chan Attak from South Sudan steering the vessel, which had 165 people on board. Former BrewDog staff won't get the money they're owed after the company's collapse. Administrators say there's insufficient funds to cover unpaid wages. And it's tightly locked at 0-0 at half-time as Brentford host Chelsea in a West London derby in the Premier League. Brentford are looking to stay unbeaten this season. That's the latest. I'm Ruth McKee.

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
3: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
2: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
3: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
2: बुकिंग और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

0: radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent. It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London. With even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.
1: गलियां कुमी ते पैरे ने जुतियां ही कसीगियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
2: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
1: चाचा केड़ा चाचा?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कानस लाने ना 1 पाउंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरे पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
2: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935